0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुभ कल कार्यक्रम में हम पर्यावरण से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और हम बार बार जिक्र करते रहे चले आ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अपना पर्यावरण बदल रहा है। आज भी अभी भी समय है कि हम इस पर्यावरण के प्रति अभी भी जागरूक हो और अपने साथियों से भी कहें कि आप भी जागरूक हों और साथ साथ में लोगों को भी बताएं कि अब हमें पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित और दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अपना बदल रहा है और इस पर्यावरण का बदलाव ये संकेत देता है कि पर्यावरण जो आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है, इसका कारण क्या है। कारण हम और आप सब जानते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, साथ में कार्बन जो निकलता है गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन जो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, साथ साथ में पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में हमें सोचने की बात है कि हमें इसको किस नजरिए से देखना होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम शुभ कल में आज हम कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी से लाना ये हमें सोचना होगा, क्योंकि अब पृथ्वी दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इस ग्रह और उन सभी जीव प्राणियों जिन्हें इस आश्रय प्रदान करता है और खुशहाली के प्रति उत्पन्न चुनौतियों के बारे में वैश्विक एवं जन जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन एक सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है जिसकी आवश्यकता प्रकृति और धरती के साथ स्वभाव प्रोत्साहित करने के संबंध में 1992 की रियो घोषणा में जताई गई थी। इसका लक्ष्य मानवता के वर्तमान और भावी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जरूरतों के बीच संतुलन कायम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में पारित प्रस्ताव संख्या जो हम बताने जा रहे हैं 63/278 के जरिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय किया गया था और भारत विश्व में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली में से एक है जहां पर 37.70 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र यानी 2011 की जनगणना की उसकी अपेक्षा पे बता रहे हैं, जो कुल आबादी का 33%। अनुमान है कि 2030 तक भारतीय शहरी जनसंख्या के स्तर पर करीब 40% बढ़ोतरी होगी। इसकी आबादी 58% यानी 58 करोड़ हो जाएगी। इस दौरान 2015 से 2030 की अवधि में भारत की शहरी आबादी में 16 करोड़ लोगों की वृद्धि होने का अनुमान ऐसा लग रहा है और जताया जा रहा है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। विशाल आबादी के कारण भारत वर्तमान ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। 2019 में जब भारत ने में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 3.7 गीगा टन और इसका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन 2.60 टन था, परंतु भारत का ऐतिहासिक संचयी 1870 से 2017 उत्सर्जन बहुत कम है, जो कि अमेरिका में 25%, यूरोपियन संघ में 22% और चीन में 13% की तुलना में 3% है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 2021 के अनुसार 2019 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी दुष्प्रभाव से सर्वाधिक पीड़ित देशों में भारत 7वें स्थान पर था। भारत ने देश के रूपांतरण में शहरों की भूमि की पहचान की है। सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 11 शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, उन्नतशील और टिकाऊ बनाना और लक्ष्य संख्या 13 यानी जलवायु परिवर्तन और उनके दुष्प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना को क्रियान्वयन करने के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप भारत ने शहरीकरण की प्रक्रिया मजबूत बनाने के उपाय पहले से शुरू कर दिए हैं ताकि शहरों को अधिक सक्षम एवं समावेशी एवं कार्बन

0: में कमी के साथ टिकाऊ बनाया जा सके। भारत में जलवायु संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के बारे में 2008 की राष्ट्रीय कार्य संख्या यानी NAPCC अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की ऐतिहासिक शुरुआत और राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित महत्वाकांक्षी एवं प्रतिबद्ध योगदान INDC कार्य योजना प्रस्तुत करना शामिल है इसमें। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये सभी उपाय स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की नीतियों और उनके कार्यक्रमों को इर्द गिर्द केंद्रित करती है। इनमें से समुन्नत शहरी केंद्र, कचरे से संपदा को बढ़ाना देना, सुरक्षित एवं स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क की स्थापना करना, प्रदूषण में कमी और वन एवं वृक्षों का अक्षादान के माध्यम से कार्बन सिंक बढ़ाने की भारत के प्रयास शामिल हैं। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं मित्रों, आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताएंगे, छोटे छोटे बिंदियों पर प्रकाश डालेंगे, चूंकि हम बातचीत भी करते चले जाएंगे और हम गीत संगीत भी सुनते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण गीत को हम सुन लेते हैं, पर्यावरण से जुड़ा। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।
1: पर्यावरण बचा लो भैया, मान लो कहीं

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। साथियों, हम उन आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ में कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी लाना, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम और आप देख रहे हैं

कारों से निकलने वाला धुआं, खास तौर पर जो हमारी मीलें लगी हुई हैं या फैक्ट्रियां लगी हैं उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। साथ साथ में आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शहरों का लगभग 70% योगदान रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे फैक्ट्रियों की चिमनियों के माध्यम से हो, जिसमें परिवहन, भवन निर्माण, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र शहरी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में बल्क योगदान के लिए जिम्मेदार हैं। आवश्यकता है कि इस बात की कि सभी संबंधित हितधारक शहरों और कस्बों में टिकाऊ एवं समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करें, और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पर COP21 पेरिस समझौते जो हुआ था और सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रति हमें वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से लक्ष्य 11 जो है जिसमें 2030 तक समावेशी, सुरक्षित, सम्पूर्ण और टिकाऊ शहरों के निर्माण की बात की गई है, जिसे हम SDG कहते हैं। जो SDG लक्ष्य 13 है, इसमें जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा भी व्यापक रूप से एक विस्तृत बहुस्तरीय एवं क्रॉस सेक्टरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें एक स्थानीय फोकस होता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई को तेज कर सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए साधन प्रदान कर सकता है। इसे देखते हुए वैश्विक महामारी के संदर्भ में विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस निम्नांकित के लिए सभी हितधारकों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। वैश्विक अभियान रेस टू जीरो और UN हैबिटेट और क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज पर विचार विमर्श और विचार मंथन करना नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को अमल करने योग्य शून्य कार्बन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व की 7.5 अरब जनसंख्या में से आधे अधिक यानी 55% लोग अब शहरों में रहते हैं, जिनकी ऊर्जा खपत में 78% और वैश्विक CO उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% से अधिक जिम्मेदार हैं। 2030 तक विश्व की लगभग 60% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में होगी, और इस तीव्र शहरीकरण से विशेष रूप से ऊर्जा खपत, औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन से वांछित उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहेगा। यह आकलन हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा की तरह व्यापार का रवैया जारी रखता है तो धरती का तापमान 2050 में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जिसमें भयावह अनुपात के बाद प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मानव बस्तियां, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और शहरी गरीबों के लिए असुरक्षित बनाता है। इसमें चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और इसमें प्रभावित लोग भी होंगे। किफायती और उत्सर्जन में आक्रामक कमी आने की कार्यनीति के साथ कम कार्बन वाली संसाधन कुशल हरित व्यवस्था अधिक लाभ देने के वादा कर रही है। साथ साथ में शहरी पर्यावरण प्रदूषण और आपदा रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन आकलन और अनुकूलन ढांचा विकसित करने तथा समन एवं अनुकूल कारणों के वित्त शोषण उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य उपायों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे कि कम कार्बन फुटप्रिंट वाली भवन निर्माण सामग्री, रियायती क्षेत्रों और विकास केंद्रों की संतुलित आयोजनों जैसे कि उपायों के माध्यम से ऊर्जा सक्षम और जलवायु प्रकोप रोधी शहरों का निर्माण, ऊर्जा सक्षम भवन संहिता और प्रदूषण नियंत्रण अपशिष्ट प्रबंधन आदि के बारे में हम जन जागरूकता कर सकते हैं, और जन भागीदारी के हितधारकों के बहुउद्देशीय सहयोग हम कर सकते हैं। और भी साथियों, इस कार्यक्रम शुभकाल में बातचीत होगी। हम यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं, पर्यावरण से जुड़ा। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदे।

ओ भैया पेड़ ना कटाइयो, अभी आपने मस्ताना, दिनेश मस्ताना और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत को सुना, लोकगीत का आनंद लिया। साथियों, अभी भी समय है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अथक प्रयास करें, खासतौर पर उन शहरी क्षेत्रों जहाँ पर क्षेत्रवासी हमारे निवास करते हैं। शहरों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण वहीं से फैलता है, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला और चाहे वो चिमनियों से धुआं निकलने वाला, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब भारत सरकार का क्या आश्वासन है शहरी क्षेत्र के लिए? भारत सरकार के मंत्रालय किस तरीके से शहरी क्षेत्र के लिए काम कर रही है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। जो शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए फरवरी 2019 में जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन फ्रेमवर्क जारी किया था, जो शहरों के लिए जलवायु कार्रवाइयों की दशा में एक मार्गदर्शन ढांचा है और जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार बनाने और उनके प्रति जोखिम कम करने के लिए मदद करता है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जैसे हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट शहर मिशन, अमृत PMAY, शहरी परिवहन आदि शहरियों को जलवायु स्मार्ट होने के उद्देश्य प्राप्त करने की सहायता करेंगे। देश में जारी विभिन्न मिशन, विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत न केवल शहरों को सुविधाजनक बनाने बल्कि शहरों में बुनियादी सेवाओं जैसे जलपूर्ति, परिवहन, बिजली, नल जल, उपचार, ठोस अपशिष्ट जो रहते हैं उनका प्रबंधन करना, बढ़ती मांगों के को अधिक संसाधन कुशल, कम कार्बन एवं आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से पूरा करने के लिए मदद करेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं जो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक और बड़े बात बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी आवास परियोजना में थर्मल कंफर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। इस तकनीकी से प्राकृतिक जो बातयान तापमान और आर्द्रता नियंत्रण में मदद मिलेगी, इमारतों की आवासीय गुणवत्ता में वृद्धि होगी और उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाना संभव होगा। इसलिए योजना एवं आवास कार्य नीतियों के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है जो समावेशी स्वस्थ एवं टिकाऊ आवास को बढ़ावा दे सके। परंतु इन हरित भवनों की लागत चूंकि सामान्य घरों की तुलना में थोड़ी अधिक है, इसलिए हमें सामूहिक आवास परियोजनाओं में थर्मल कंफर्ट को सक्षम करने के लिए उपयुक्त हरित वित्त शोषण तंत्र खोजने की आवश्यकता है। तो ये जो बातें हैं जो आपको हम कार्यक्रम शुभ कल के माध्यम से बताने जा रहे थे।

0: और भी बातें हैं जो, चूंकि अब समय भी हो रहा है कार्यक्रम सब कल से जाने का, अगले कार्यक्रम में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: शुभ कर्म बदलती जलवायु के लिए तैयार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे हैं और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो दू करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते ही मतलब काया तुम बात कर रहा था अपने साथियों
1: से। नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है गो।
0: हाँ, वो तुम्हारा है।
1: नहीं हमारे युवा साथी ये सोचते हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे।
0: हाँ, और हमें मतलब जो जानकारी है देंगे। नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आउ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गयी ये बात को तो मैं बुरा लगा हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटने लगे।
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी वो थेगी जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछा थेंगे के भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काहे से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथियों ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो हुए ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो।
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते आप इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगा कि कितो बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेत हुए। अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं।
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ में अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा।
0: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ।
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते हैं यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देवे जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा था जी चीजन को सीखवे में। यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो तो नौकरियन में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जा कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: लेकिन जो तो बताओ अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे।
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे
0: मतलब हमारे बहन को एक फोन आ रहा है बता दो।
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बे का सलाह दे रही है उनको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बताबो चाहते हैं।
0: फोन तो उठा लो पहला वो।
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहे फोन हम अपने साथी उनको बताबो चाहते हैंगे के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझो ये बहुत बड़ी चीज रहती है। जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में जो सीख मिलत हैगी उनके जो अनुभव रहते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रही है।
0: अब फोन कटगा आप काय में से उठा रहे
1: हैं। चलो हमारे संगे टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही है चलो उनसे बतकाओ अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं।
0: तो बात तो हम ही करें आपको ना करें।
1: चलो आप ही कर लो भैया रूपा जी को फोन है वो आप ही बात।
0: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते रूपा रानीपुरा से जिला टीकमगढ़ से अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है अभी सिलाई सेंटर का काम

0: अच्छा, यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं। तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
1: जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था, वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा। वहाँ से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर तो पैसे भी मिलने लगे
0: जी,
1: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
0: जी। तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
1: हाँ, वैसे गांव के थे आदमी जो, जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
0: जी,
1: उनसे हमने संपर्क किया। तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा, कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है
0: जी। तो आपने जब अप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
1: नहीं, फ्री में सीखा।
0: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
1: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठी है खाली घर में।
0: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
1: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना चाह देंगे कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
1: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए है, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
1: हाँ, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी।
1: हाँ,
0: बिल्कुल,
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी, लोग बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसी पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने
0: जी। कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए?
1: हाँ,
0: कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़कियां?
1: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाले भी हैं, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करें, ताकि

0: गांव वालों को भी यार, तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
1: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी, सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
0: परेशानी तो आती है वर्षा दीदी
1: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
0: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं
1: जी,
0: उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
1: जी जी,
0: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते
0: ना। फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने कि ये चीज क्या है
1: जी,
0: तो हमें जानकारी हुई।
1: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
0: नहीं किया अभी, नहीं नहीं 1 महीने में नहीं हमने किया
1: जी,
0: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
1: अच्छा 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
0: हाँ वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
1: ये चीजें आप बना लेती हैं?
0: हाँ यही 2-3 चीजें बना लेते हैं।
1: अच्छा इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
0: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
1: अच्छा तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
0: नहीं अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
1: अच्छा
0: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर होगा टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हूँ उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
0: हाँ पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता, कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान, तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
1: जी,
0: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छे जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
1: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
0: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
1: जी तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
0: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ ताकि हम 2 पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़ के।
1: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
0: कर सकते हैं, लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है, तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाए, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
0: इसलिए सोच रही है, लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए, आगे ठीक ही नहीं रह जाए, सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे, लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
1: जी
0: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छी बात, धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: कायवार साहब, तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें दिखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
1: बताए
2: हम सोच ही रहते हम कमे आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके, कैसे हाँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लाने ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ा थे, उसके नाने मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे, ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई हैंगी, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रही। वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहता हूँ सुनी कि अरे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी सुबह बहुत है ना, नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहा थे, चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काहे कि रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उखो कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करबे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उखो जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है, और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे, वो सोच भी के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते है वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छो लगत है तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काय अटकती। हम तो कहत आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
2: अरे ज्ञान की देवी, अब तो ना रुक जाओ और हमारे साथियों को तनक सांस लेन दो और जो लोग गीत सुनन दो उनको, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी। तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे।
1: हाँ, मतलब तुम तो मैं बोलन दो सो कछु नहीं है, नहीं, तुम नहीं, बोला
2: नहीं, एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवा थे अपने श्रोता साथियों को जो 900 गजल को अपन गजल को सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सकते हो गए, कहे गया हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथ ही
0: दो।
1: अनखों बस पूछ वो चाह रहे हैंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैंगे, कैसे है? जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं।
2: हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49।
0: बिल्कुल यही पे कह रहे हैं, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो उनके लाना हमारा नंबर जो है वो।
2: हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ। और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास यदि
0: जानत
1: है,
0: है
1: नहीं, जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ

0: गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाको डाउनलोड करो और चाँ जिते बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चाँद उन छिड़िया में बैठ के सुन सकत हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सकत हैंगे।
1: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाना है आप।

और फिर अपन जितने चाहे बैठ के इस कार्यक्रम को सुन सका थे सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो काहे कि अब हमें चलन दो और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

धर गेल में डेरा बबुआ।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैलसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भैया। आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, शूंडिलासिता तथा उपटा या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है के कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं।

0: हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया
0: जी
1: आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गी की बात करें तो कद्दू वर्गी की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो
0: हाँ
1: कौन
0: जी
1: कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या
0: जी
1: उनको उपाय करना चाहिए मैम?
0: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें
1: जी
0: प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमलासिता, चूर्णिलासिता और उकठा या ग्लानि रोग।
1: जी
0: तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ।
1: जी
0: तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए
1: जी मैम
0: और अगेती बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या वांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25%
1: जी
0: और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। जी
1: जी मैम यही तो
0: जी
1: मैम अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस
0: जी
1: समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए?
0: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना
0: जी जी
1: चाहिए।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर
0: जी
1: बात करें तो पानी की किल्लत

0: बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या
1: मार्केट में
0: किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां
1: मार्केट
0: इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं क्षेत्र
1: बिल्कुल भाई, बिल्कुल जी मैम।
0: में।
1: और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा
0: जी
1: जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और
1: जी
0: उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए,
1: अच्छा
0: वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है,
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज
1: बिल्कुल
0: कर
1: भाई,
0: देता है। तो इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना, जब लगातार एक ही

0: रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है तो, और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वेराइटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम, तो
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट
0: जी
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी।
0: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां, मतलब ये?
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी
1: जी
0: चीज ये है वहां रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था, मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है मैम?
0: देखिए जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है,
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि
1: जी मैम,
0: हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है
1: जी मैम,
0: कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
1: जी
0: दूसरे
1: मैम,
0: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि
1: जी मैम,
0: जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
1: बिल्कुल मैम,
0: और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
1: जी मैम,
0: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
1: जी मैम,
0: लोग जो हैं वो अगर लोग

0: शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो
1: जी मैम
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा
1: जी मैम
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक
1: और
0: जाएंगे।
1: कहीं ना कहीं
0: इसका जो
1: मैम
0: है
1: हमने भी
0: इसका एक
1: मैम
0: और
1: जी
0: जी
1: मैम
0: विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल
0: आप
1: आपने सही
0: शिक्षित
1: बात
0: हो
1: कही है
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा विकल्प है
0: करें।
1: जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
0: जी
1: समस्या यहाँ
0: क्योंकि
1: पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती
0: होंगे
1: जी

0: है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं और जंगलों को ना काटें, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं,
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको वाली बात ही जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी, मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी मैम,
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 7 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम,
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है।
1: जी
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या शादी करना है
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम ना वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
1: जी मैम, जी मैम,
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम,
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम,
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई लेना नहीं चाह रहा था,
1: जी मैम,
0: लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
1: बिल्कुल
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम। इसका मैम बस
0: तो
1: लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें,
1: जी मैम,
0: जल संरक्षण करें
1: जी मैम,
0: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके,
1: जी मैम,
0: उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए।
0: जी धन्यवाद,
1: जी थैंक यू मैम,
0: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: जी थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबीना अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन बढ़िया बढ़िया सी गारियन को और इन गारियन को अपन आनंद ले हैं। जी हाँ दोस्तों, काय के जब ब्याह शादियन को मौसम आ जाता और ऐसे मौसम पे महिलाएं जब गारी गाती हैं तो देखो कितनो सुहानो लगत मड़वा की तरह। और जब मड़वा की तरह गारी हो तो अपने गांव पूरा मोहल्ला के लोग बाग सुनत हैं और वो गारी विधा में जो चीज़ दर्शाई जात गाई जात बा कितनी सुहानी लगत। सो दोस्तों, आज आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली खो। सो आओ दोस्तों, देर ना करत भाई सुनत हैं बढ़िया सी प्यारी सी गारी खो और लेते हैं इको आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, घर होती आदर कर लेती। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सबजन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो। ई गारी खूं गा रहे थे हर प्रसाद कुशवाहा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप एक क्रम में सुनते हैं अगले साथी इनकी गारी। इनखों

देखो दोस्तों, जब कितनी बढ़िया गारी अपन सब जन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे प्रताप सिंह यादव जी और संगे गा रही थी रेखा शर्मा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में सुनाते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिटिया दइयो तो धन दइयो राम गरीबी असी दइयो ना। देखो दोस्तों कितनों प्यारी जापन ने गारी सुनी, ई गारी को आनंद लाओ है। ई गारी को गा रही थी उमा प्रजापति जी। अब दोस्तों ये गारी के संगे संगे आओ सुन लेते हैं अगले साथियों की और गाई भाई गारियन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में, और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली।

बिल्कुल साथियों, हमने खबर ना पाई हो सजना कब के आए। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, इको आनंद लव है। ई गारी खो गारी हती सुशीला देवी जी। अब आओ दोस्तों एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन खो।

बिल्कुल, तुम बड़े प्रेम से आइयो समधी हमें भूल ना जइयो। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। ई गारी को गा रहे थे भैया गंगाराम कुशवाहा जी। आप दोस्तों गंगाराम भैया जी की गारी के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से अपने दोस्त माता दिन भैया को जाबे को समय हो गए है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

अब करो भरोसा हर पे, अब करो भरोसा हर पे, करो भरोसा हर पे, ना करियो अपने घर

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सुरंग जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। मोहम्मद हारून, बस हम बहुत अच्छे हैं। और आपके मिजाज कैसे हैं? जी, मौसम कैसा है आपके इधर? जी जी

0: लेकिन 2-3 दिन से तो बादल छाए हैं, आज तो अच्छे खासे बादल हैं, और 2-3 दिन से तो गर्मी की उमस कम हो गई है अप्रैल से। मस्कान का समाधान आप जाने मन चुपके चुपके। धन्यवाद आपका।
1: दिल मेरा खो गया।

0: फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे श्रोता साथी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: अरे मनीष भैया जी, सादर प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा श्री मथुरा उत्तर प्रदेश से अरे मनीष भैया से वार्तालाप कर रहा हूँ बुंदेलखंड ओरछा के माध्यम से।
0: बहुत अच्छा, आपका परिचय सुन के ही हमारा दिल खुश हो जाता है सर।
1: जी धन्यवाद।

0: कसरत हो जाती है, व्यायाम हो जाता है। साइकिल चलाने से हमारे खर्चे बचते हैं, साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ और साफ रहता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, डीजल पेट्रोल की बचत होती है। और साइकिल चलाने से हमारा जो स्वास्थ्य रहता है, मिजाज रहता है और स्फूर्ति बनी रहती है, ये बहुत अच्छे साइकिल के फायदे हैं और पर्यावरण के अनुकूल होता है।
1: बहुत बढ़िया, आप इतना अच्छा सोचते हैं, जब आपका दिल इतना अच्छा है, खास तौर पर पर्यावरण को लेकर आपके जो विचार हैं बहुत ही सराहनीय है सर। आपको हम बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
0: जी, धन्यवाद। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है भाभी
1: जी
0: और गीत के बोल है, चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। बहुत ही अच्छा गाना है, साइकिल दिवस के अवसर पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल सर, ये म्यूजिक दिया है अनु मलिक जी ने, नितिन मुकेश सिंगर है, राधा पॉटवाल जी की आवाज में आपको सुनवाते हैं इस भावी फिल्म का ये गीत सर
0: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, नमस्कार।
2: चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, गणेपुरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: मौसम कैसा है आपके छत्तीसगढ़ का?
1: मौसम तो बहुत गर्म है।
0: गर्म है, पानी नहीं गिरा है वहां पे?
1: नहीं, अभी तक तो नहीं गिरा है
0: अच्छा,
1: जी।
0: चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज की फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: फिर मैं ब्रह्मचारी से सुनवा देंगे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: चले ऑफिस से, आउट ऑफ ऑफिस।
1: एक बार फिर से अपना बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, एक हमारे साथ मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप पर, अनुराग जी हैं झांसी से, आप लिख रहे हैं मुझे, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी दो रास्ते, इस फिल्म का गीत सुनना है, तो आइए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर? जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज? ईना फिल्म का गाना सुनना है। कौन सा गीत सुनेंगे आज? मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। क्या बात है, और क्या हाल चाल है सर? अच्छा, जम्मू कश्मीर का बहुत अच्छा मौसम होगा। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर में अगर आना हो तो कहाँ पर घूमने लायक होगा? अच्छा, हाँ अच्छा, चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज? हीना फिल्म का। ठीक है सर, आप
1: मेरे जागने मेरे
2: और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
1: नमस्ते सर जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमदुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात करे सर जी।
0: मोहन सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है, महाराष्ट्र में बहुत धूप का तापमान चालू है। पीछे पीछे थोड़ी दिन बरसात थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन और बदलिया है, बदली तो ऊपर से नहीं मगर धूप है, बहुत कड़क सी धूप है सर जी।
0: यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, कभी धूप हो जाती है, कभी बदल आ जाते हैं, कभी बरसात
1: हो जाती है। बस बिल्कुल वैसा से है, दो दिन को तीन दिन को थोड़ी बदली ऊपर से आ रही है तो धूप हो रही है, दो दिन को भैया हो रहा है मगर अभी धूप कड़क है। खेत में ही बैठे हैं, भैंसा चरा रहे हैं तो बैठे थे यहाँ छांव को।
0: अच्छा अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: गाना प्रेम कैदी है फिल्म
0: जी,
1: और उसमें गीत है प्रियतमा प्रियतमा मैंने प्यार किया जब से मैं भूल गया कब से।
0: प्रियतमा प्रियतमा,
1: हाँ प्रिय एसपी, हाँ एसपी वाला सुब्रमण्यम की आवाज है और लता मंगेशकर। प्रियतमा वो मेरी प्रियतमा मैंने प्यार किया जब से मैं भूल गया कब से।
0: फिल्म का कौन सी फिल्म का है सर?
1: प्रेम कैदी, प्रेम कैदी, करिश्मा कपूर वाली।
0: करिश्मा कपूर वाली प्रेम कैदी,
1: हाँ प्रेम कैदी, एसपी बाला सुब्रमण्यम, लता मंगेशकर, मेरी प्रियतमा।
0: अच्छा
1: हाँ, मैंने प्यार किया जब से मैं भूल गया कब से, वो मेरी प्रियतमा।
0: बिल्कुल साहब, आपको हम गीत ही सुनाए दे रहे हैं प्रेम।
1: थैंक यू, धन्यवाद सर जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिए आपके पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू सर।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और साथियों यदि आपको
2: लक्स विटामिन सी के साथ जो दे निखर
0: कॉल कर सकते हैं मान मोनो इस 20 से।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
1: सर जी नमस्कार, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी हरबिलास जी, क्या हालचाल है आपके?
1: अरे बहुत अच्छी तरह से, आपकी दुआ इसी कृपा से।
0: मौसम ठीक है वो तय को?
1: हाँ मौसम लुका छुपी चल रही है, कभी धूप कभी बारिश कभी आंधी तूफान चल रहा है।
0: यहाँ पे भी ऐसा ही है अपने यहाँ?
1: हाँ पूरे देश में इसी तरह का माहौल चल रहा है।
0: बताइए कौन सा गीत सुनोगे आज?
1: फिल्म का नाम है हम नहीं सुधरेंगे। 100-200 की नौकरी कहाँ से लाऊं, कार साइकिल पे होके सवार निकल चलें सुनने में।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गीत को आपने चुना है इसको। हाँ।

0: आपने बताया है।
1: आज है विश्व साइकिल दिवस, इसलिए
0: कुछ कहना चाहेंगे विश्व साइकिल दिवस पर? विश्व साइकिल दिवस पर कुछ कहना चाहेंगे सर?
1: हाँ, कहना तो चाहूंगा, अगर आप समय दे सकते हैं तो कह सकता हूँ।
0: सर स्वागत है
1: जी। सर कॉपी उठा ले सर जी। आओ मिलकर साइकिल दिवस मनाएं, रखे याद सदा इसको, इसको ना कभी भुलाएं। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की साइकिल की करें सवारी, स्वस्थ शरीर होता है इससे, मन को संतुष्टि मिलती भारी।
0: क्या बात है।
1: पर्यावरण सुधार में सदा सहायक, प्रदूषित होने से धरा बचाएं। आओ मिलकर साइकिल दिवस मनाएं, सबसे सस्ता सुलभ टिकाऊ साधन, तेल ऊर्जा सदा बचाए, सामाजिक समावेशन में सदा सहायक, ध्वनि प्रदूषण दूर भगाए, ऊर्जा खपत नगण्य, इसकी वायु गुणवत्ता में लाए सुधार, जलवायु परिवर्तन की चुनौती हल करे, आर्थिक बचत का है आधार, सबसे उत्तम व्यायाम साइकिल चलाना, घर घर में अलख जगाए, आओ मिलकर साइकिल दिवस मनाए। धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आपके पसंद का ये गीत सर।
1: नमस्कार नमस्कार।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है।
1: राम राम भाई साहब, सदन से उतरना ही राम। राजेश यादव बस स्टैंड लेहड़ी जिला महुआ से बोले, राजेश यादव
0: जी। बिल्कुल राजेश भैया, बहुत धन्यवाद आपके।
1: बिल्कुल भाई साहब, आप हम भी सुरती मनीष भाई साहब कहाँ है खो गए। रेडियो बुंदेलखंड में आवाज नहीं सुना रही।
0: चलो आपसे भी मुलाकात हो गई, आप बात भी हो गई, ये बहुत अच्छा लगा आज।
1: हाँ भाई साहब,
0: बताओ कौन सा गीत सुनो आज।
1: एक गाना है उठ मेरी जान।
0: उठ मेरी जान, कौन सी फिल्म को है?
1: जो है इनकी परेश रावल है सारी फिल्म में।
0: तमन्ना फिल्म का है।
1: तमन्ना फिल्म को हाँ, सोनू निगम की आवाज में है।
0: ठीक है साहब, आपको आपको सुनवाते हैं आपके पसंद को जो गीत।
1: भाई साहब राम राम।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी मैं यूपी झांसी ग्राम अथन्ना थाना रक्षा से बात कर रहे हैं।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी प्रीतम सिंह यादव।
0: बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी आज साइकिल दबास है तो साइकिल के ऊपर ही सुनेंगे। साइकिल पर छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है।
0: साइकिल पर छलांग लगाकर हमको चांद पकड़ना है?
1: जी
0: क्या बात है, और सब बढ़िया है?
1: और सब बढ़िया है। और साइकिल दबास पर कहना चाहेंगे कि लोगों को साइकिल को ही अपनाना चाहिए, इससे जो है तो शरीर का व्यायाम होता है साइकिल चलाने से, और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण होने से बचता है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने गीत को चुना। चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर।
1: जी सर, धन्यवाद।

0: नहीं कोई जो
1: करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
2: जी नमस्कार आदरणीय आरजे महोदय जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहिता श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कौन सा गीत सुनाएंगे राजू भैया?
2: गाना तो सर जी कोई भी सुना दीजिए, आज मूंग की थ्रेसिंग हो रही है, फिर भी बारिश भी हल्की फुल्की अभी हो चुकी है।
1: अच्छा
2: जी जी
1: चलो, आपको हमारे एक और साथी, चूंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, जिनका ग्राम पंचायत बतासा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना से वीर सिंह यादव, धर्मेंद्र सिंह यादव, बिटिया क्रांति, रोशनी बिट्टू, शिवेंद्र यादव, उनको तमन्ना फिल्म का गीत सुनना है, ये शामिल हो जाएंगे आप इस गीत में?
2: जी सर जी हाँ, इसी गीत में शामिल कर दीजिए हमें।
1: चलिए ये जो हमारे ग्राम पंचायत बतासा तहसील अजयगढ़ से वीर सिंह यादव जी हैं और उनके साथ ही, उनको तमन्ना फिल्म का गीत, सबके जागे हुए तारों को नींद नहीं आएगी।
2: भाई साहब मूंग ले गए, थ्रेसिंग हो गई है।
1: हाँ मूंग ले गए, हम जरूर आ रहा है भाई साहब आपके लाने। तो इस गीत को रामपाल भैया हमारे जो हैं बे और हमारे सभी साथी जो ग्राम पंचायत बतासा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना से हैं, वो सभी साथियों को ये डेडिकेट है ये गीत।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। शिवा लोहट MPGD से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी शिवाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे
1: सर जी? मूवी का नाम रहेगा इतिहास, और उसमें गाने के बोल रहेंगे, जुदा अपने दिलबर से होने लगी है, मोहब्बत मोहब्बत को रोने लगी है। और हमारे मित्र रहेंगे बदरुआ से पुरुषोत्तम कुमार जी, गोल्डी जी, पूरन जी, अविनाश जी, और हमारे मित्र रहेंगे राम सिंह परमार जी, कल्याण सेन जी, गजराज लोधी जी, और तमाम सुनने वाले स्पेशली आप सर।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर।
1: धन्यवाद सर।

साथी दीनदयाल जी हमें कॉल कर रहे थे, तो हम आग्रह करेंगे कि यदि आप, चूंकि फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होने की समय भी हो रहा है, तो दीजिए आपके अर्जे मनीष को जाने की इजाज़त। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना, सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, कहरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: आजीविका जाने सुने और अपनाएं।
1: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
2: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
1: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद हैं आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और साथ में है मनीष।
1: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुनी रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
2: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
2: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस

0: बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचे, तो इसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है। तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए हमारे किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं। तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो साथियों ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम।
1: हाँ जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई हो और अब हमारे साथी जो हैं वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए।
0: तो हम चलते चलते वहाँ पर हम पहुँचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहाँ पर शोध होता है, जहाँ पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, वो किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें, तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे आपको ये सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा हैं और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो बरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों को संबोधित करने, किसान मतलब जो है सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो है एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने को मिलती है और बिना केमिकल के हम जो सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल हो जाता है जो किचन से पानी निकलता है जी। और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उससे उगा सकते हैं जी। और दूसरा इसके साथ ही साथ जो है हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है उपजाऊ है, तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कि हमने एक पोसा ड्रम हेड एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, उसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है, तो उस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो हमने जो है

0: केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
1: जी।
0: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है मिलकर खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाएं और उसमें खाद में को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है और लहसुन है, इन सब की खेती करके हम लोग ये मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है, कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
1: जी।
0: तो हम इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो हम छोटे छोटे स्तर पर टुकड़ों में जबड़े खेतों को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो यही सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो हम लोग को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग पुराने अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती मतलब जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध हैं यहाँ पे
1: जी।
0: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए जो है पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी हम जो भी जानकारी दे सकते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं हम उपलब्ध रहेंगे।
2: हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है।
0: जी जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ, क्योंकि मतलब जो है मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है, तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो है मिर्च है, पालक है और आपका धनिया है, हरा धनिया और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जो मतलब ये जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय इनमें कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और समय कम लगने की वजह से हमें, भाई देखो हमारा किसान जो है इतना अभी सक्षम नहीं है कि भाई ये उसने धान लगाया छह महीने बाद आया धान, हालांकि यहाँ नहीं होता है फिर भी जैसे गेहूं है टाइम टेकिंग है, गन्ना है बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती हैं, ज्यादा प्रैक्टिसेस जो है नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कृषण क्रियाएं होती हैं वो नहीं करनी पड़ती, निराई बुराई और बस यही थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शाकीय पौधे होते हैं सब्जियां और इनको समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए, जब भी लगता है कि फ्लावरिंग हो रही है फ्रूटिंग हो रही है तो पानी देते रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसा कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं और जो हम बड़े किसान हैं हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब ये व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के जो है लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जी का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है जिनकी डिमांड कम है, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है, यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पे, जिसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केटों में बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान हैं वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंट मार्केट के लिए एक बड़े भूभाग पे जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है, जैसे हम यहाँ से दिल्ली मैं देखता हूँ कि चना बहुत जाता है दिल्ली हरा चना, तो चने खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए क्योंकि चने साग बनता
1: बिल्कुल सर,
0: तो आप ये यहाँ से

0: चना उगा के यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है।
1: जी यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है।
0: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाएं, उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेना चाहिए। उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन सी पोषक तत्व कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद मतलब उसमें दे रहे हैं तो वो भी उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है, और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड मतलब भूमि की तैयारी करने के समय ही हम उसमें जो खाद डालते हैं देसी खाद, और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था का बीज लेना चाहिए, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया और हमने उगा दिया। हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहाँ से वो जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स, तो हमें वहां से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो, जो भी इरिगेशन सिस्टम हो, उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए, या फिर ड्रिप इरिगेशन जो है जो बूंदी सिंचाई होती है सब्जियों में उसको भी उत्पादन मतलब उसको लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है, तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदी सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में यहाँ पानी इस बार बहुत गिरा है, लेकिन पहली बार 4 सालों में 5 सालों में बहुत कम पानी
1: जी जी।
0: तो ऐसे केस में सब्जी उगाना बहुत टिपिकल होता है, हार्ड होता है
1: जी।
0: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली हो, जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है, जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं, लेकिन जो साखी है जो पालक है उसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। तो हमें ऐसी सब्जियों को ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो, तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
1: जी। और चलते चलते सर हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: सबसे मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर को पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है आज के टाइम में, आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जितने हम केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पे आएंगे किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को खेती को जो हम अब एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हमारे सभी जो है जितने भी युवा हैं सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आए इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी उसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये कि हमारे कृषि का ये भविष्य है, और सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फ्लावर उत्पादन, इसको करके हम जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो, सब्जी तो उगाइए ही साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फूल से भी हम जो है मतलब जो सहायक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा, नमस्कार,
1: धन्यवाद सर।

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यवसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जियां उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर

0: लगा कर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
1: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
0: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी हम केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खादों की सब्जियां जो हम खाते हैं तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाएं तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करें।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए इसके लिए भी कई तरह के केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचे, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और अगर कोशिश कर सके आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
0: चलिए अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी सी छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
1: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथी हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा।
1: साथियों, हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
0: 9425147126।
1: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे,
0: तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब।
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आज। चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं, और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को

0: लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी।
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके। ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की

0: आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1,706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है इस पर भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में, सुनते रहिए।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रूपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिक

0: सर्वोत्तम उपयोग है ताकि बाद और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश की खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिएगा।
1: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटर सेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी FPO के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो हैं वो इस प्रकार से हैं, आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है। यहां पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना

0: होगा, अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
1: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है, तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
0: हमारा नंबर है 9425-14-17-26।
1: तो आपके रेडियो साथी मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

साथियों नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनैबे बारे हमारे सब साथियों को, सब हमारी प्यारी प्यारी सी बहनन को बरसा बहन की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंचावे। साथियों देखो, आप तो जानते ही होगे कि ई वक्त और आज के दिना खास तौर से हम आप सबके लाने लेके आउथेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ सखियो, और अम्मा के चौके में अपन और बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी बनाने की विधि को सीखेंगे। देखो खाना बनावो तो बहुत सरल बात हैगी और हमारी सब बहनें अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन खाना बनावे के संगे कौन कौन सी बातन को ध्यान रखे जज्जी अपन को, या फिर मान लो अपन को कोनो नई चीज सीखने हैगी तो कैसे सीखे, तो भैया रेडियो बुंदेलखंड एक बढ़िया माध्यम है वो अपनो, और ई में जोन हम आपको विधि बताऊ थे या जोन सखियन से बातचीत करत हैंगे, सो उनकी बातें सुन के और आप अपने खाना पे जो है और स्वादिष्ट चार चांद लगा सकती होंगी, है ना? आपको देखो खाना पर भी चार चांद लगा लगे। तो सखियो देखो, आज हम आपके लाने कार्यक्रम अम्मा के चौके में लेके आए हैंगे सोयाबीन चिली बनावे की आसान सी विधि। अब आप सब जने सोच रहे हुज्जो के जो सोयाबीन की बरी खाई थी और सोयाबीन आलूहन में बना के खाओ तो जो सोयाबीन चिली बनावे की विधि कैसे हुज्जे? बिल्कुल, आपके मन में जो सवाल खटक रहो है वो हम आपको उको समाधान भी बता रहे हैं, काहे कि इकी पूरी विधि और काका सामग्री में लगने हैं वह हम आपको जरूर बता रहे हैं। तो बने रहो हमारे संगे और सुनो जो कार्यक्रम। सो आओ अपन सीखत हैंगे सोयाबीन चिली कैसे बनाऊ थेंगे, इके बारे में कछु खास बात रखो।

भी एक ऐसी डिश हैगी साथियों जो सभी जने पसंद करत हेंगे, सबको पसंद जा आ जाऊ थेगी। काहे कि स्पाइसी खावे वाले लोग इको ज्यादा पसंद करत है, यानी कि जो तेज तर्राट खावो यानी ज्यादा मिर्ची वालों खाना खाऊ थेगे उनको भी जो ज्यादा पसंद आऊ थे। वो सोयाबीन चिली पौष्टिक चीजन से भरपूर होत हैगी, काहे कि इमें हम बहुत सी सब्जियन को भी इस्तेमाल करत हेंगे। देखो साथियों, जब अपन नॉर्मल सी सोयाबीन की बनी बनाऊ थेंगे तो अपन का करते कि या तो गला के सिर्फ सोयाबीन अकेले बना ले उठे, या फिर एक नौ तरीका और है कि अपन और जो है चावलन में बना ले उठेंगे, है, या फिर

0: एक और जो है कि आलूअन में मिला के बना लेते हैं। लेकिन जो अपन सोयाबीन चीली बना भी वाए हैं, इमें का करने अपन को कि बहुत सारी सब्जियन को भी मिक्स करने है। सो जी में कहूँ ये कि पौष्टिक चीजें अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पे हैंगी। तो इमें आप सबको बता देवे के रोटी चावल या फिर आप ही खो ऐसे भी खा सकते हैं, यानी कि बिना रोटी चावल के भी आप खा सकते हैं खूब मजे लेके। सोयाबीन चिली खो आप 15 से 20 मिनट में भी बना सकते हैंगे, और आप चाहो तो ये खो रसादार भी बना सकते हैंगे, मतलब ज्यादा रसा नहीं, गाढ़ी गाढ़ी सी एकदम सी बना सकते हैंगे, या फिर सूखी आप बनाओ चाहो तो सूखी भी खो बना सकते हैंगे। तो चलो साथी, आप बहुत देर से आप सुन रहे हैंगे कि सोयाबीन चिली बन रही, सोयाबीन चिली, लेकिन कैसा बनाना है जो तो अपन को सीख नहीं आया ना। तो चलो अपन देख देंगे कि सोयाबीन चिली बनत कैसी हैगी, और ये क्यों बना भी खिलाना है। सबसे पहले जो सवाल अपने मन में आउट है वो जो ही है वो के सोयाबीन की सामग्री का हो जी, यानी सोयाबीन चिली बना भी खिलाना है। सामान अपन और उनको का चाने उके बारे में एक नजर, एक लिस्ट अपन और बना ले उठे, ठीक है। तो बहनों लिस्ट बनावे के लाने आप का करो, एक कॉपी और पेन उठा लो जल्दी से। का होती के कबू कबू अपन और अब पहले आप पेन उठा लो, फिर हम बाद में बताएंगे, ठीक है। सो का होते हम का कह रहे थे कि अपन और रहे का करते कि चीजन को ध्यान तो रख लेते, लेकिन जब बना भी खिलाने बैठत ना, सो चीजें आधी से ज्यादा दिमाग से बाहर निकल जाती। काय काय कि अपने दिमाग में और बिला सारी जिम्मेदारी रहती, बहुत चीजें इताएगी उताएगी, सब सोचने आता अपन को, है कि नहीं। सो इसे कोनो चीज अपन भूल ना जावे, सो पेन कॉपी अपन उठा के और उमे नोट कर लेवे, ठीक है। तो अब उठा लिया अपने पेन कॉपी, चलो तो अपन शुरुआत कर रहे थे। सामग्री काका अपन को चाने हैगी, तो सामग्री में सबसे पहले देखो सोयाबीन की बरी अपन को लेने हैंगी 500 ग्राम, प्याज अपन को एक ले लेने हैं, हरी मिर्च में 4 ले लेवे, और शिमला मिर्च अच्छी खासी आउट हैगी, सो 1 से 2 पीस शिमला मिर्च की ले लेवे। हरी प्याज अगर मिल जावे आपको तो 1 से 2 जो है हरी प्याज आप ले सकते हैंगी। गाजर इमें अगर आपको मिल जावे तो गाजर भी आप एक ले सकते हैं। तेल की अगर बात करें तो देखो साथियों, आप जाना थोगे कि तेल जो है वो अपने अनुसार डालना चाहिए, क्या कि कछु जने ज्यादा खाऊ थे और कछु जने कम खाऊ देंगे। सो अपन को ध्यान रखने हैं वो कि तेल अपने हिसाब से, यानी 100 ग्राम आप ले लेवे। जीरा ई में जरूर डाल लेवे 1 चम्मच, लहसुन अदरक को पेस्ट भी अपन को 2 चम्मच ई में ले लेने हैं, यानी कि लहसुन और अदरक को दो ही दोनों को मिला के पेस्ट बना के 2 चम्मच हो जावे, ठीक अपन को लेने हैं, ठीक है। काली मिर्च भी अपन को लेने हैगी 1 से 2 चम्मच, और मक्का को आटा अपने सबके घर में मिल जाऊ थे वो, मतलब बहुत कम मिला थे वो, अब तो पहले बहुत जल्दी मिल जाऊ। तो मक्का को आटा ही में केवल अपन को 2 चम्मच चाने हैं। नमक जो है वो स्वाद अनुसार चाने हैं। देखो अब काहे कि नमक की अगर बात हम आपको बता दें तो बस गलत हो जाएगी, आप 1 चम्मच डाल लो या 2 चम्मच, और ज्यादा हो जाए या कम रह जाए सो आप हमें खो उल्टी बातें सुनाओ है। तो इसे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब आगे एक और चीजन, कछु चीजन के हम नाम बता रहे हैं, जो आपको मिल जावे तो ठीक है, और नहीं मिलवे तो आप बिना ई के भी बना सकते हैं। जैसे कि सोया सॉस 2 चम्मच चाने हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ई के बिना भी बन जाए। मिर्ची सॉस जो तो मिल जाए आसानी से, सीखो 3 चम्मच डाल लीजिए। अब विनेगर चाने हैं अपन को, सो 2 चम्मच जो चाने और नहीं मिले तो ई के बिना भी चल जाए। धनिया पत्ता तो देखो मिल जाए वो, ई के बिना ना चले लेकिन, ठीक है। सो धनिया पत्ता ले लो। अब जा तो हो गई सामग्री के, अपन को सामग्री का चाने हती। अब अपन बात कर लेवे कि अपन को विधि यानी के बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम ही में जो करने हैं, अब काहे के बिला देर हो गई बातें करत कर, सो हवा मन कर रहा हूँ कि कहना है देख छोटो सो कछु सुन लेवे अपन, और फिर सुनने के बाद फिर अपन विधि जान लेंगे, ठीक है। तो अपन तो एक बढ़िया सो लोकगीत को सुनत हैंगे, और लोकगीत सुनने के बाद फिर से कार्यक्रम में लौट के आ रहे, कार्यक्रम अम्मा के चौके में। बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौके से।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
2: गुटका छोड़ो सैया रे, हाँ हाँ ए गुटका छोड़ो सैया रे, हाँ हाँ परो तो

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। साथियों देखो, अबे आप सुन रहे थे इन्होंने से लोकगीत को, जिखो गा रहे थे काशीराम और उनके साथी। अब अपन बात कर ले के अम्मा के चौके में, जो विधि की अपन बात कर रहे थे कि विधि कैसी हैगी चिल्ली सोयाबीन बनावे की, सो अपन उखो देख लेते हैंगे। तो सबसे पहले अपन को का करने हैं वो कि पानी में थोड़ा सो नमक डाल ले और सोयाबीन की जो बरी अपन ने लई हैंगी उखो डाल के 2 मिनट तक उबाल ले, और उबलवे के बाद फिर उखो ठंडो होवे के लाने छोड़ देवे अपन। ऐसा नहीं है कि एकदम से जब उबल गई सो अपन एकाएक जल्दबाजी में जब रखेंगे सो गरम गरम उन्हें पानी में से निकाल लो, ऐसा नहीं करना। ठंडो होन देवे पहले, फिर उसके बाद उन्हें पानी में से निकालवे। तब तक अपन का कर लेवे कि अब अपन प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़न में काट लेवे, और इनको काटवे समय आपको ध्यान रखने हैं कि जो गाजर और शिमला मिर्च प्याज जो भी आपने चीजें ली हैं इनको पहले धो लेवे अच्छी तरह से। का होती कि जल्दबाजी में अपन इन चीजन पे ध्यान तना कम दे पाऊ थेंगे, सो आप अच्छी तरह से इन्हें छील लेवे और धोने तो आपको जरूरी है। अब क्या करवे कि जब तक अपनी सोयाबीन जो है बा अच्छी तरह से ठंडी हो गई हुच्चे, तो सोयाबीन को पानी निकाल लेवे यानी को उखो निचोड़ लेवे। आगे अपन बता चलवे कि इमें अभी में साथियों अपन को का करने है गो के अंडा, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, काली मिर्च, अदरक लहसुन को पेस्ट और मक्का को आटा जो है और थोड़ा सो नमक डाल के इखो अच्छी तरह से मिला लेवे। एक बार फिर से सुन लेवे, अंडा यानी अंडा हो फोड़ लेवे, सोया सॉस, टमाटो सॉस, काली मिर्च, अदरक लहसुन को पेस्ट, मक्का को आटा और थोड़ा सो नमक डाल के इखो अच्छी तरीका से मिला लेवे। फिर इखो तेल में अच्छे से तेल में फ्राई कर लेवे, और सावधानी से करने है वेनो आपको फ्राई। काहे कि देखो फ्राई करते में भी कई सारी ऐसी अचूक अपन से हो जाऊ थेगी जो अपन को का कहते घटना भी लग जाऊ थेगी। जैसे जल्दबाजी में अगर अपन फ्राई कर थेंगे तो तेल जो है हाथन पे उचक जाऊ थे गो, जिससे अपन जल जाऊ थेंगे। सो ऐसो बिल्कुल भी नहीं करने है गो, आपको ध्यान रखने है कि सावधानी से अपन को जो है इन्हें तलने है गो। फिर का करवे कि गैस पे एक करज्जा को चढ़ावे और उमे तेल और जीरा डाल लेवे, यानी कि अब अपन बनावे की बारी आ गई। सो करैया में तनक सो तेल डाल लेवे और फिर उमे जीरा डाल देवे। जीरा डालने के बाद अपन को का करने है गो कि प्याज और गाजर को डाल देवे तनक देर तक उखो भूंजत रहे। भूंजबे के बाद जब प्याज भुन जावे तो उको कलर जो है सुनहरे कलर को हो जाए है गो, फिर उमें शिमला मिर्च और थोड़ा सो नमक डाल के तनक देर तक और भूंज लेवे। फिर इमें सोया सॉस, टमाटो सॉस और विनेगर डाल देवे। इसके बाद सोयाबीन जो अपन ने निचोड़ के रखी हती उखो अलग से फ्राई कर लेवे, और फ्राई करवे के बाद थोड़ा सो नमक डाल के अच्छी तरीका से मिला लेवे। सब चीजन को अच्छी तरह से मिला लेवे और ऊपर से ढक्कन लगा के इखो कम से कम 2 मिनट तक आपको पकाने है गो, जिसे अपनी जो सोया चिली है वह अच्छी तरह से बन के तैयार हो जावे। और 2 मिनट से आप 5 मिनट भी ले सकते हैं, कोनो बड़ी बात नहीं है, अच्छी तरह से चीजें पक जावे। फिर इसके बाद आप जब ढक्कन खोलो इको तो अच्छी तरह से धनिया पत्ती धो के और इमें डाल देवे और गैस को बंद कर देवे। जब अपन परोसवी की बारी साथियों आतेगी तो बढ़िया सो धनिया ऊपर से अपन डाल के और सोयाबीन चिली को अच्छी तरीका से परोसे तो बड़ी स्वादिष्ट और खुशबू ईगी देखो तो बढ़िया सी आउट हैगी। अब साथियों जा तो अपन ने जानी कि सोया चिली कैसी बनत है, इकी विधि अपन ने जानी, इको काका चाने हाँ तो बनाबी के लाने वो सब जान लो है अपन ने। आगे कछु सुझाव भी इके लाने हैंगे, सो आप भी ध्यान से सुन लो। सोयाबीन को गर्म पानी में डाल के फुला लेवे। अगर आप सोयाबीन में अंडा मिलाऊ थेंगे तो टटोलत टाइम सोयाबीन ज्यादा तेल नहीं सूखत है गो, और टेस्ट भी इको अच्छो होते है गो। सोयाबीन को छानत समय तेल गरम, यानी के तलत समय तेल गरम होवो चाहिए और आंच धीमी हो चाहिए। आप चाहे तो आप अपनी पसंद को भी सब्जी इमें डाल सकते हैंगे, यानी कि आपकी जो पसंद की सब्जी हैगी बा भी इमें डाल सकते हैंगे और इको और स्वादिष्ट आप बना सकते हैंगे। तो साथियों जा तो हती हमारी आज की रेसिपी, और हमें पूरो पूरो विश्वास है गो कि आपको जा रेसिपी जरूर जरूर जरूर पसंद आई हुजे। और साथियों अगर आपको ई के बारे

मैं कछु और पूछने हैं गो, या फिर ऐसी ही आपको और भी रेसिपी हमसे पूछने हैंगी तो भी आप हमें जरूर फोन के माध्यम से बता सकते हैंगे, और या फिर हमें चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी बता सकते हैंगे। जी के लाने अपना पता है गो, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा, जो अपनो पतो है गो। जी पे अपने सब साथी भैया चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपन को संदेश लिख सकते हैंगे, सुबह जरूर हमसे जुड़बे और अपनी बात को जरूर रखबे। साथियों आज के कार्यक्रम अम्मा के चौकी से अब हम आ जाबे को समय हो रहा है गो, और चलत चलत हम आपको सुनवात हैंगे बढ़िया सी गजल को। अब अपने रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबे की अनुमति, हमारी और आपकी फिर हुई है मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहें, मुस्कुरात रहें और सावधानी पूर्वक से खाना बनाए अपन। हमेशा ध्यान रखें कि किचन में जो है बाल बच्चन को संगे ना ले जावे, काहे कि किचन में ऐसी बहुत सी नुकीली चीजें होती जिनसे उन्हें नुकसान हो सकता है गो। तो अब हम चलते हैंगे और जल्दी आपसे फिर से मुलाकात हुई है, तब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और ये विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है तटवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता तथा उकता, या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30-70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें, मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाए, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है के कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक, यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो

0: करना चाहिए मैम?
1: जी वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकता या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए
0: जी मैम,
1: और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिन और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिन और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: ये मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो
1: जी
0: शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस
1: जी
0: समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाएं, तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए?
1: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
0: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका
1: जी
0: ध्यान रखना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी
0: और
1: जी
0: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर
1: जी
0: बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो? साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं
1: बिल्कुल
0: इस
1: मैम,
0: क्षेत्र में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर

0: बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
1: जी
0: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
1: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
0: जी
1: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
0: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
1: जी
0: चाहिए इन
1: जी
0: बातों
1: शुरुआत से,
0: को।
1: किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
0: जी
1: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
0: मैम,
1: उतना।
0: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
1: जी जी
0: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है,
1: जी जी
0: तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
1: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
0: जी
1: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
0: बिल्कुल
1: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
0: जी।
1: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढांचा लगवा दिया जाए खेत
0: जी
1: में तो
0: जी
1: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
0: मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
1: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
0: जी
1: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है।
0: जी
1: दूसरी चीज ये है वहां रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल, कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो, जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट, अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
0: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं,
1: जी
0: क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये
1: जी
0: हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल

0: लिया था वो सवाल
1: जी
0: हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर
1: जी
0: पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम
1: जी
0: बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु
1: जी
0: परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा
1: जी
0: जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे
1: जी
0: से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर
1: जी
0: महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को
1: जी
0: मिलता है, उसके
1: जी
0: बारे में मैम आपका क्या ख्याल है?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है।
0: जी मैम,
1: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि
0: जी मैम,
1: हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है कि
0: जी मैम,
1: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
0: जी
1: दूसरे,
0: मैम,
1: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है।
0: जी
1: क्योंकि
0: मैम,
1: जहां शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
0: बिल्कुल मैम,
1: और
0: बिल्कुल,
1: जहां शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
0: जी मैम,
1: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
0: जी मैम,
1: लोग जो है वो, अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो
0: जी मैम,
1: पर्यावरण भी सुधर जाएगा,
0: जी मैम,
1: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक
0: और
1: जाएंगे।
0: कहीं
1: तो
0: ना कहीं
1: इसका
0: मैम
1: जो है,
0: हमने भी
1: इसका
0: मैम,
1: एक और
0: जी
1: जी
0: मैम,
1: विकल्प यही है कि शिक्षा,
0: जी बिल्कुल,
1: आप
0: आपने सही
1: शिक्षित
0: बात कही
1: हो
0: है
1: और
0: कि
1: दूसरों
0: शिक्षा
1: को
0: एक
1: शिक्षित
0: ऐसा
1: करें।
0: विकल्प है
1: जी
0: जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
1: जी क्योंकि
0: समस्या यहाँ पर
1: जब आप
0: मैम ये
1: शिक्षित
0: आती,
1: होंगे,
0: जी
1: जी, अब आप शिक्षित होंगे तभी
0: जी
1: आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
0: बिल्कुल
1: पाएंगे
0: मैम,
1: कि
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
0: बिल्कुल,
1: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें,
0: जी मैम,
1: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं, और जंगलों को ना काटें,
0: जी मैम,
1: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
0: जी मैम,
1: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
0: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको भलीभांति जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
1: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
0: जी मैम,
1: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
0: जी मैम,
1: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था। तो
0: जी मैम,
1: अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है।
0: जी,
1: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या शादी करना है
0: जी
1: वो
0: मैम,
1: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम ना वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
0: जी मैम, जी मैम,
1: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं
0: जी मैम,
1: तो जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए, जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे,
0: जी मैम,
1: कोई भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था,
0: बिल्कुल मैम, जी मैम,
1: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो, मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि

0: हवा तो मिलना नहीं चाह रहा था,
1: जी मैम,
0: लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो
1: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें, और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने सवाल समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए।
0: जी धन्यवाद,
1: जी थैंक यू मैम।
0: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: जी थैंक यू साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

विधा बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनाते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आज भी अपन सुने एक बढ़िया सी विधा को और विधा को आनंद ले हैं। वह विधा है नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, जब गांव में किया ब्याह शादी में नौटंकी आवे और नौटंकी की हवा ऐसी फैलत के हम का बताएं कि आज चलो फलाने की बारात में नौटंकी आ रही है। सो सब जने बिल्कुल नौटंकी देख के लाने बिल्कुल उताब ले रहे, तो बहुत ही तैयारी से कि आज चलो कानन के लाने स्वापी बांध लो, हाथने में मोजा पहन लो, मुंडा पहन लो, चलो अपन को नौटंकी देखने हैं आज। सो दोस्तों, नौटंकी जब अपन देखते हैं तो कितनी सुहानी लगत, कितना रात भर मन लगो रहा नौटंकी को देखने में। सो दोस्तों, आज यही क्रम में अपन सुनाई ई विधा नौटंकी को और नौटंकी को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ दिन न करत भय सुनते प्यारी सी नौटंकी को जी ये गा रहे हैं बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।

0: ज्ञान के घाती बने हैं।
1: हाँ लाला, जितना ही भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है बाप।
0: यानी हमारे भाई साहब ने।
1: हाँ
0: तो सुनो भाभी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे हैं।

भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं। नहीं थी, ऐसा नहीं है। मेरे संग में मरेंगे तू भाभी, अभी तो जगत में जचेगी ये सासी सही। सारी दुनिया कहे फंसी देवर के संग।

0: सुनिए, मैं जा रहा हूँ और बाजार से एक शीशी लाकर देता हूँ और सारे भोजन में चाय मिला दो और हजलों को खिला देना।
1: नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करिए महाराज, नहीं। जा मेरे लाला हरदोल को बुला के ला।
2: जाती हूँ लाला जी। चलिए, तुम्हारी भाभी ने

0: ज्ञान के घाती बने हैं।
1: भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है
0: माँ। यानी हमारे भाई साहब ने।
1: हाँ।
0: तो सुनो भाभी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे हैं।

0: भाभी,
1: आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं, नहीं तो ऐसा नहीं है। मेरे संग में मरेंगे तुम भाभी अभी, तो जगत में जचेगी ये सांसें सही, सारी दुनिया कहे फंसी देवर।

0: देखो दोस्तों, जहाँ अपन सब जनन ने सुनी है नौटंकी, ई नौटंकी को आनंद लव है दोस्तों। ई नौटंकी को गा रहे थे बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। आप साथियों, एक क्रम में हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया जी को जाबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दीन भैया को तो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ई कार्यक्रम में ई बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।
1: विधा बुंदेली।